0: ఆకాశవాణి సమయం 6 గంటలకు వస్తుంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో హిందీలో, అనంతరం ఆంగ్లంలో వార్తలు. ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రలే.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे. वे चेन्नई में लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो में यात्रा भी करेंगे. पूनमल्ली पोरूर कॉरिडोर में 3,700 मीटर लंबा डबल डेकर ढांचा बनाया गया है. इसमें आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली है जो परिचालन को सक्षम बनाने के लिए तैयार की गई है. प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे अवसंरचना परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनका शुभारंभ करेंगे. इनमें अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित 5 अमृत स्टेशन पलनी, वेल्लोर कैंटोनमेंट, अंबा समुद्रम, परमकुडी और नमक्कल शामिल है. श्री मोदी पोरूर झील के निकट स्थित जलकंठेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे. प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज 1 वर्ष पूरा हो गया है. इसकी शुरुआत पिछले वर्ष आज ही के दिन देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी. इसके अंतर्गत 11 मंत्रालयों और विभागों की केंद्र की 36 केंद्रीय योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है. राज्य सरकारों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी इसमें शामिल किया गया है ताकि प्रत्येक जिले के कृषि संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य किया जा सके. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल अद्दीस अबाबा में अफ्रीका में भारत के मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता की. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीका ग्लोबल साउथ, एकजुटता, रणनीतिक स्वायत्तता, बहुध्रुवीयता और साझा विकास की आकांक्षाओं पर आधारित गहरे संबंध साझा करते हैं. इससे पहले विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए. उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया.
2: इंडिया वर्क्ड रेजोल्युटली.
3: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए. इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है. हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है.
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुझाव दिया है कि यूक्रेन को नया राष्ट्रपति चुनना चाहिए जो रूस के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए समझौता करने में सक्षम हो. उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को रूस के तेल शोधक कारखानों, विशेष रूप से डीजल ईंधन का उत्पादन करने वाली इकाइयों को निशाना बनाने को लेकर भी चेतावनी दी. श्री ट्रंप की टिप्पणी उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया मंच ट्रूथ सोशल पर कहा था कि रूस तत्काल अमेरिका और वैश्विक बाजारों के लिए 3,00,000 टन से अधिक डीजल की आपूर्ति करेगा. भारत ने कहा है कि दिल्ली में कल हुई घटनाओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की चिंताएं निराधार है और ये देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप है. जिनेवा स्थित भारतीय स्थायी मिशन ने एक बयान में कहा कि अधिकारी कानून के अनुसार कार्य करते हैं और किसी भी शिकायत के निवारण के लिए न्यायालय सभी के लिए उपलब्ध है. दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है. मौजूदा स्थिति के आधार पर सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर यातायात परिवर्तित रहेगा. यातायात पुलिस ने लोगों को यात्रा से पहले जानकारी लेने और गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी है. इस बीच उत्तर रेलवे ने घोषणा की है कि आज सभी रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं. ये भी कहा गया है कि संबंधित सभी मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा भी

0: और भारत आज शाम इंदौर में वेस्ट इंडीज के साथ तीसरा T20 क्रिकेट मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। वे चेन्नई में लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे। श्री मोदी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो में पूनमल्ली बाईपास स्टेशन से पूनमल्ली बाईपास स्टेशन कॉरिडोर में यात्रा भी करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल अवसंरचना परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनका शुभारंभ करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित 5 अमृत स्टेशन पलनी, वेल्लोर कैंटोनमेंट, अम्बासमुद्रम, परमकुडी और नमक्कल शामिल हैं।
1: प्रधानमंत्री सड़क विकास, बंदरगाहों और विज्ञान में नवाचार से जुड़ी कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इनमें समुद्री बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, कार्गो हैंडलिंग क्षमता का विस्तार करने और लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार करने के लिए प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखना और उद्घाटन करना शामिल है। श्री मोदी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की मौजूदा मनाली रिफाइनरी में यूब ऑयल बेस्ड स्टॉक्स परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कामराजार बंदरगाह पर एक अतिरिक्त कोयला घाट परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे और कंटेनर टर्मिनल के लिए कैपिटल डेजिंग कार्यों की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी आईआईटी मद्रास में सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और चेन्नई के जयगोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी पोरूर झील के निकट स्थित जलकंठेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना की शुरुआत पिछले वर्ष आज ही के दिन देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा राज्य सरकारों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी शामिल किया गया है ताकि प्रत्येक जिले की कृषि संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य किया जा सके।
2: इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता, सिंचाई सुविधाओं, ऋण की उपलब्धता और फसल कटाई के बाद की आधारभूत संरचना में सुधार करना है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 स्तरीय व्यवस्थाएं बनाई गई है। स्थानीय कृषि आवश्यकताओं के अनुरूप जिला कार्य योजनाएं तैयार की जाती है। वहीं 36 केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत 121 संकेतकों के माध्यम से प्रगति की निगरानी की जाती है। पहले वर्ष के दौरान योजना के लिए चुने गए सभी 100 जिलों ने अपनी कार्य योजनाएं तैयार कर ली हैं और उनका क्रियान्वयन जारी है। इन जिलों का औसत प्रदर्शन स्कोर अप्रैल 2026 में 18.85% से बढ़कर अगस्त 2026 में 46.89% हो गया। नितिका गुप्ता के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। अपनी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको गुजरात की बंदरगाह क्रांति के बारे में बता रहे हैं।
3: गुजरात के पास देश की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा है, लेकिन दशकों तक इसका पूरा लाभ नहीं उठाया जा सका। तटरेखा को केवल भूगोल न मानकर औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखने के दूरदर्शी विजन के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीपीपी मॉडल के साथ निजी निवेश को आमंत्रित किया। बंदरगाहों को बिजली, सड़क, रेल और औद्योगिक क्षेत्रों से इस तरह जोड़ा गया कि फैक्ट्री सीधे बंदरगाह और बंदरगाह सीधे वैश्विक बाजार से जुड़ सके। इसी मॉडल पर मुंद्रा, हजीरा और पीपावाव जैसे देश के प्रमुख निजी बंदरगाह विकसित हुए। गुजरात का यही सफल मॉडल आगे चलकर सागरमाला के रूप में राष्ट्रीय नीति बना, जिसके तहत देश के बंदरगाहों की क्षमता 2014-15 के 1561 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़कर 2817 मिलियन टन प्रतिवर्ष हो गई और प्रमुख बंदरगाहों पर टर्न अराउंड टाइम भी घटकर आधा हो गया। भारत की समुद्री उपलब्धियां और हरित पहलों को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
4: देश के कुछ बड़े पोर्ट्स ने पहली बार एक साल में रिकॉर्ड 15 करोड़ टन कार्गो हैंडल किया है। इसमें हमारा कंडला का दीनदयाल पोर्ट भी शामिल है। देश के कुल समुद्री व्यापार कारोबार का

0: लगभग एक तिहाई हिस्सा अकेले हमारे कच्छ के ही बंदरगाह से हैंडल होता है।
1: इसी विजन के साथ गुजरात के कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के सदस्य राहुल मोदी ने कहा,
2: जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यकाल में उनकी जो सोच थी कि समुद्र और बंदरगाह केवल कार्गो हैंडलिंग के साधन नहीं है बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ इंजन बनने की पूरी ताकत रखते हैं, इसी सोच के साथ पोर्ट्स को उन्होंने रोड, रेलवे, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, एसईजेड, लॉजिस्टिक, हिंटरलैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा।
1: समुद्री तटों को आर्थिक प्रगति के इंजन में बदलकर भारत का यह बंदरगाह आधारित विकास देश को वैश्विक समुद्री मंच पर अग्रिम पंक्ति में स्थापित कर रहा है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: जालिम लोशन,
5: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन।
4: दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
6: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। मौजूदा स्थिति के आधार पर सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर यातायात में परिवर्तन किया गया है। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और किसी भी यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल कर दी गई है। इस बीच उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि आज सभी रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं।
2: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी, ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली और निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
1: शारदीय नवरात्रि का महापर्व आज से शुरू हो गया है। 9 दिन का ये धार्मिक उत्सव माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का प्रतीक है। श्रद्धालु इसे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि माँ जगदम्बा का आशीर्वाद सभी के जीवन में प्रसन्नता, शांति, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गुजरात में नवरात्रि के आगमन के साथ ही राज्य के सभी शहर भव्य रास गरबा समारोह के लिए तैयार हैं।
3: गुजरात में नवरात्रि का ये पर्व पारंपरिक गरबों प्रज्वलित कर, उपवास रखकर, घट स्थापन जैसे विशेष अनुष्ठानों और पारंपरिक रास गरबा नृत्य के साथ उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन बनासकांठा प्रतिष्ठित अंबाजी मंदिर, पावागढ़ के महाकाली मंदिर और कच्छ के माताना मढ़ मंदिर सहित राज्य के प्रसिद्ध मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। त्योहारों के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गुजरात पुलिस ने राज्य भर के 22,000 से अधिक स्थलों पर कड़े प्रबंध किए हैं। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: तेलंगाना का विशेष पुष्प उत्सव बथुकम्मा कल एंगलीपुला बथुकम्मा के साथ शुरू हुआ। 9 दिन तक मनाए जाने वाले इस उत्सव में महिलाएं तंगेड़ू, गुनुनु, गेंदा और गुलदाउदी जैसे रंग बिरंगे फूलों से बथुकम्मा तैयार करती हैं। काला सागर में जहाज से बचाए गए 3 भारतीय नागरिक रोमानिया से अब स्वदेश लौट रहे हैं। बुखारेस्ट में भारतीय दूतावास ने बताया कि साहिल संधू, अश्विनी कुमार और हरमन सिंह को उनकी वापसी के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराई गई है। काला सागर में सोमवार को जहाज एमवी रॉयद मम्मा दोव पर हुए हमले में घायल हुए क्रू सदस्यों में ये 3 भारतीय भी शामिल थे। सऊदी अरब में रियाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल।

0: घायल हुए। घरेलू हवाई अड्डे पर कल हुए इस हमले में 4 सऊदी नागरिक, 2 बांग्लादेशी और अमेरिका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, सूडान तथा फिलिस्तीन के भी एक एक नागरिक की जान गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में अफ्रीका के लिए भारत के मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीका ग्लोबल साउथ, एकजुटता, रणनीतिक स्वायत्तता, बहुध्रुवीयता तथा साझा विकास की आकांक्षाओं पर आधारित गहरे संबंध साझा करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुझाव दिया है कि यूक्रेन को नया राष्ट्रपति चुनना चाहिए जो रूस के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए समझौता करने में सक्षम हो। श्री ट्रंप की यह टिप्पणी उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर कहा था कि रूस तत्काल अमेरिका और वैश्विक बाजारों के लिए 3,00,000 टन से अधिक डीजल की आपूर्ति करेगा। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल गरज के साथ तूफान और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। कर्नाटक के तटीय भाग, कोंकण और गोवा में कुछ स्थानों पर आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
2: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
1: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
2: आज ही www.pgportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
1: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स समाधान दीदी।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद मुकेश। आज सभी समाचार पत्रों ने नवरात्रे शुरू होने की शुभकामनाएं दी है। नवभारत टाइम्स लिखता है, देवी हमारे द्वार, शक्ति का वास हमारे आसपास। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मंदिर सजे, शक्ति की भक्ति में आज से लीन होंगे श्रद्धालु। रामलीला मंचन का गणेश वंदना के साथ होगा शुभारंभ। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शब्द जनसत्ता ने प्रकाशित किए हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 56 विशेष बसें चला रही सरकार, दिल्ली की बसों में 2,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात। अमेरिका और रूस में डीजल डील, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से 7 अप्रैल तक डीजल सप्लाई बैन हटाया। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों में है, कैप्टन स्मिथ पर हमले की जांच, NIA को, पायलट पर केस। दैनिक जागरण की खबर है, पत्र लिखता है, फ्लाई दुबई विमान अपहरण और आतंकी साजिश की होगी जांच। पहाड़ों के छोटे से गांव में बसता है मिनी सराय, मैक्लोडगंज से 2 किलोमीटर दूर धर्मकोट। राजस्थान पत्रिका ने यह खबर पर्यटन को बढ़ावा शीर्षक से प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आज 1 वर्ष पूरा हुआ। उत्तर रेलवे ने कहा, आज सभी रेल सेवाएं सामान्य समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी। देवी दुर्गा की आराधना का 9 दिवसीय पर्व नवरात्रि धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ शुरू हुआ। और भारत आज शाम इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा T20 क्रिकेट मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch development projects worth over 13,000 crore rupees in Chennai, Tamil Nadu this afternoon. Pradhan Mantri Dhan Dhany Krishi Yojana completes 1 year today. Northern Railway says all train services to operate as per their normal schedule today. Navratri, 9-day-long festival to worship goddess Durga begins with religious fervour and gaiety. Saudi authorities say attack on Riyadh airport killed 12 people and wounded over 300.

0: చిత్రసీమ కార్యక్రమంలో ఫిలిం గీతాలు విన్నారు. సమయం 12 గంటలు కొద్ది క్షణాల్లో. వార్తా ప్రసారం ఢిల్లీ నుండి రిలే.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई रेल परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए चेन्नई पहुंच चुके हैं. श्री मोदी आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से तैयार चेन्नई मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे. श्री मोदी चेन्नई मेट्रो में पोरूर बाईपास स्टेशन से पूनमल्ली बाईपास स्टेशन तक की यात्रा भी करेंगे. लगभग 4.25 किलोमीटर लंबे पूनमल्ली पोरूर कॉरिडोर में बिना ड्राइवर के डबल डेकर मेट्रो संचालन के लिए उन्नत सिग्नलिंग प्रणाली लगाई गई है. प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे. इनमें पलानी, वेल्लोर छावनी, अम्बासमुद्रम, परमाकुड़ी और नमक्कल में स्थित 5 अमृत स्टेशन शामिल हैं. इन स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास किया गया है. श्री मोदी जलकिंडेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे. दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है. सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर यातायात परिवर्तित किया गया है. पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है. दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद सभी 45 मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं. मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल कर दी गई है. उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने कहा कि आज सभी रेलगाड़ियां निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं.
2: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी, ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो. 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली निजामुद्दीन आने लगी. और आज 11 तारीख है, 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई.
1: कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरभ दास को रिहा कर दिया गया है. इन तीनों को कल एहतियातन हिरासत में लिया गया था. नई दिल्ली में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत ने आज उनकी रिहाई का आदेश दिया. दिल्ली पुलिस के अनुसार तीनों ने 1 वर्ष तक शांति बनाए रखने का भरोसा दिलाया है. उन्हें 50,000 रूपये की जमानत पर रिहा किया गया है. दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके को उनकी दादी के निधन की सूचना कल ही दे दी गई थी. पुलिस के अनुसार दिपके को मानवीय आधार पर उनके पैतृक शहर जाने के लिए हर संभव सहायता की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने ये सहायता लेने से इनकार कर दिया. दिल्ली पुलिस ने उस वीडियो को भ्रामक बताया है जिसमें एक कथित उपनिरीक्षक ने दिल्ली के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पद से इस्तीफा देने की बात कही है. दिल्ली पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में दिखाया गया उपनिरीक्षक दिल्ली पुलिस में नहीं है. भारत ने कहा है कि दिल्ली में कल हुई घटनाओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की चिंताएं निराधार हैं और ये देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप हैं. जिनेवा स्थित भारतीय स्थायी मिशन ने कहा कि मानवाधिकार कार्यालय को निष्पक्षता और बिना किसी पक्षपात के अन्य देशों में बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर भी ध्यान देना चाहिए. भारत ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है. विदेश मंत्रालय ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना

की है। हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए हैं। इसमें 4 सऊदी नागरिक, 2 बांग्लादेशी और अमरीका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, सूडान तथा फिलिस्तीन के भी एक एक नागरिक की जान गई है। गुजरात में गांधीनगर निगम थारा और ओखा नगर पालिकाओं सहित स्थानीय निकाय चुनावों के लिए शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में पानी अचानक बढ़ने के बाद तटवर्ती बस्तियों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। आज तड़के जलस्तर बढ़ने से कई मकान बह गए। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद मीडियम वेव 406.5 मीटर अर्थात 738 किलोहर्ट्ज़ पर और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये हैदराबाद केंद्र है। हिंदी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, एक बेटी सिर्फ एक परिवार का हिस्सा नहीं बल्कि समाज के उज्जवल भविष्य की नींव है। उसकी शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, अधिकार और सपनों को पूरा करने का अवसर एक सशक्त समाज की पहचान है। हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड अर्थात अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, जो हमें बालिकाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी याद दिलाता है। आज के इस कार्यक्रम में श्रीमती विशाखा समीर माशंकर और श्रीमती शांति के साथ विशेष चर्चा प्रस्तुत कर रही है कृष्णा कुमारी।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज का कार्यक्रम समर्पित है दुनिया की हर बेटी को जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, अपने परिवार और समाज का नाम रोशन करना चाहती है और अपने अधिकारों के साथ सम्मान पूर्वक जीवन जीना चाहती है। हर वर्ष 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि बालिकाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सम्मान और आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ दो प्रेरणादायी अतिथि उपस्थित हैं। सबसे पहले एक बहुआयामी व्यक्तित्व श्रीमती विशाखा समीर मशांकर। वे सामाजिक कार्यकर्ता, उद्यमी, कवित्री, प्रभावी वक्ता और अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्ट स्किल ट्रेनर है। अपनी कविताओं, प्रशिक्षण और सामाजिक सेवा के माध्यम से उन्होंने हजारों लोगों को प्रेरित किया है। और हमारी दूसरी विशिष्ट अतिथि है श्रीमती शांति मोदली, जिन्होंने अपने 35 वर्षों के अनुभव में बैंकिंग, कानून, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास, इन सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक लेखिका होने के साथ साथ लोगों को बेहतर जीवन शैली अपनाने के लिए मार्गदर्शन देती हैं। विशाखा जी और शांति जी, आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
3: शुक्रिया।
1: विशाखा जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आज के समय में यदि हमें कन्या विकास या उनके कौशल को सही मायने में साध्य करना हो तो हमें किस दिशा में काम करना चाहिए?
2: सर्वप्रथम जागतिक कन्या दिन की बहुत बहुत बधाई। आज से शारदीय नवरात्र भी है। शक्ति स्वरूपा के भक्ति के 9 दिनों का उत्सव आज से शुरू हो रहा है
1: जी।
2: आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयां। एक साल कन्या दिन पर हमने हमारे पिताजी से पूछा है, पिताजी आपने मुझे कन्या दिन की बधाई नहीं दी, तो वो बोले हमारे यहाँ कन्या का एक दिन नहीं होता है, पूरा नवरात्रि होता है
1: जी।
2: तो कन्या पूजन होने वाले हमारे इस भारत वर्ष में
1: जी,
2: आज हम जागतिक कन्या दिन मना रहे हैं। बात करेंगे हम लोग कन्या विकास की, तो विकास मेरे हिसाब से वो किया नहीं जाता है, तो विकास हो जाता है अपने संस्कारों से
1: जी।
2: जैसे पौधे बढ़ते हैं उन्हें हम नियमित पानी और अच्छी जमीन बहाल करते हैं। जमीन मतलब कुटुंब, जिसे हम फैमिली कहते हैं, और पानी मतलब संस्कार। जब संस्कारिक कुटुंब में बच्चों का लालन पालन होता है तब समृद्ध पीढ़ी का निर्माण होता है। मैं और शांति जी दोनों भी भारतीय स्त्री शक्ति से जुड़े हुए हैं
1: जी।
2: तो हमारा एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है कुटुंब प्रबोधन, क्योंकि हम यदि समाज की रचना देखते हैं तो समाज का केंद्र बिंदु परिवार है
1: जी।
2: और वो परिवार का केंद्र बिंदु है महिलाएं, मतलब कन्याएं। तो जब तक हमारी कन्याएं सकुशल नहीं होती है तब तक हमारे समाज की, हमारे देश की, हमारे विश्व की उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए यह जागतिक कन्या दिन बहुत महत्वपूर्ण है।
1: बहुत ही सुंदर बात कही आपने। विशाखा जी, आपने न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑन वुमेन की कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, हमारे श्रोताओं को बताइए कि वहाँ से क्या मुख्य संदेश निकल कर आया?
2: हमारे भारतीय स्त्री शक्ति का एक पैनल न्यूयॉर्क गया था
1: जी।
2: भारत की ओर से वी वर रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट न्यूयॉर्क फॉर CSW70। और इस साल की जो थीम थी वो थी राइट्स जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स
1: जी।
2: तो अभी हम भारत में राइट्स टू एजुकेशन की बात करें

0: देखेंगे तो आज भी लड़का और लड़की के पढ़ाई की बात आती है तो लड़के को प्राधान्य दिया जाता है।
1: जी
0: जब मतलब हम लोग देखते हैं कि विदेश भेजना है तो घर की परिस्थितियां ऐसी है कि दो बेटों में से एक ही जा सकता है,
1: जी
0: तो लड़की भलाई कितनी भी होशियार है
1: जी
0: तो भी प्राधान्य लड़के को
1: लड़के
0: दिया
1: को ही
0: जा।
1: दिया जाता।
0: तो हम तो समाज सेवी है और हम जब भी किसी पाठशाला में जाते हैं तो वैसे बहुत सारे केसेस देखते हैं। एक बच्चे का ही पैसा है उनके पास में, तो वो पहले प्राधान्य देंगे बच्चे को पढ़ाने के लिए और लड़की को वो नहीं देंगे। आज भी आजादी के 80 साल बाद ये सब देख के बहुत दुख होता है।
1: जी।
0: एक मेरी कविता की थोड़ी चार पंक्तियां सुनाती हूँ।
1: जी जी जरूर।

0: नहीं,
1: विशाखा जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अपनी कविताओं के जरिए नारी शक्ति के बारे में बताया है। शांति जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी?
2: मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसमें राइट्स है।
1: जी
2: किसी भी लड़की का पहला अधिकार है उसकी आवाज सुनी जाए।
1: जी
2: हम अक्सर बेटियों से कहते हैं, बड़ों के सामने मत बोलो, चुप रहो, लोग क्या कहेंगे।
1: जी
2: लेकिन हमें यह समझना होगा कि सम्मान का मतलब चुप रहना नहीं है। बेटी को अपनी बात रिस्पेक्टफुली रखने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो घर पे हो, स्कूल में हो, वर्क प्लेस हो या फिर समाज में। और राइट टू स्पीच का मतलब यह नहीं कि वह किसी को अपमानित करे, बस ये है कि अपनी फीलिंग्स, ओपिनियंस, अगर उसे नहीं मानना है, डिसएग्री करना है
1: जी
2: और उसकी जो भी एस्पिरेशंस है वो व्यक्तित्व कर सके स्वतंत्रता पूर्वक।
1: जी
2: और मैं माता पिता से यह एक बहुत प्रैक्टिकल बात भी कहना चाहूंगी। आज से सप्ताह में एक बार अपनी बेटी के सामने ये सवाल पूछो, तुम क्या सोचती हो।
1: जी
2: हम बेटों को रिस्पेक्ट देते हैं, उनको चांस देते हैं, लेकिन बेटियों को कभी देते नहीं है।
1: जी
2: बस हफ्ते में एक बार से शुरू करिए और उसके बाद हर रोज कीजिए।
0: क्या बात
2: और
0: है,
2: जब
1: बहुत
2: वह
1: अच्छी बात कहा
2: जवाब
1: आपने।
2: दे
1: जी
2: और जब वह जवाब दे तो तुरंत उसे काटने की कोशिश मत करिए, पूरी
1: पूरी
2: बात
1: बात सुनिए।
2: सुनिए।
1: जी
2: क्योंकि जिस लड़की को बचपन में अपनी बात कहने का कॉन्फिडेंस मिलता है ना, वही आगे चलकर अन्याय के सामने भी अपनी आवाज उठा सकती
0: अरे
2: है।
0: वाह, बढ़िया,
1: जी बहुत अच्छी
2: एक
1: बात।
2: बेटी की आवाज को दबाना आसान है, लेकिन उसकी आवाज को मजबूत बनाने के लिए पूरे समाज को मजबूत बनना पड़ेगा। मैं एक बहुत सरल बात कहना चाहूंगी, कन्या को कमजोर समझकर प्रोटेक्ट करने की कोशिश मत करिए, बजाय उसके उसे स्ट्रांग बनाकर समाज में भेजिए।
1: जी
2: हम बेटी को कहते हैं, सावधान रहो, अकेले मत जाओ, किसी पर भरोसा मत करो। ये बातें जरूरी है पर पर्याप्त नहीं है। उसे यह भी सिखाना होगा, अगर कुछ गलत बोल रहे हो
1: तो
2: तो
1: आवाज उठानी।
2: आवाज उठाओ,
1: जी
2: अगर गलत लगे तो सामने से डट के मुकाबला करो, ना कहना सीखो। ये बहुत जरूरी है। हम हर चीज में सर झुका के हाँ कर लेते हैं,
1: जी
2: ना करना भी सीखो। हेल्प मांगने में शर्म मत करो, ये कोई कमजोरी नहीं है। अपने पैसे को समझो, फाइनेंशियल लिटरेसी जिसको बोलते हैं,
1: जी
2: वित्तीय शिक्षा, वो बहुत जरूरी है। अपने डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज और डिजिटल आइडेंटिटी को सुरक्षित रखो,
1: जी
2: अपने पास रखो। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने निर्णय पर विश्वास करना सीखो।
1: जी
2: मेरे लिए एम्पावरमेंट का अर्थ है कॉन्फिडेंस प्लस कॉम्पिटेंस प्लस करेज, यानी आत्मविश्वास, क्षमता और साहस। जब ये तीनों एक साथ आते हैं तभी लड़की वास्तव में सशक्त बनती है।
1: जी शांति जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि भारतीय कन्याएं आज खेल, विज्ञान, व्यापार, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी उनकी सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है। सुरक्षा के

0: प्रति सजग रहने के लिए क्या ठोस कदम उठाने चाहिए?
1: जी, ये बहुत बढ़िया सवाल है।
0: जी,
1: आपने जैसे कहा, आज लड़कियां स्पोर्ट्स, साइंस, बिजनेस, डिफेंस, पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी, जहां देखो हर जगह, हर क्षेत्र में आजकल कन्याएं आ रही है बाहर। इसलिए सुरक्षा की भी उसी स्तर पर समझना होगा हमको।
0: जी,
1: सबसे पहले लड़की को परिस्थिति की समझ होनी चाहिए, जिसको सिचुएशनल अवेयरनेस कहते हैं। कौन सी सिचुएशन सेफ है और कब तुरंत वहां से निकलना चाहिए, लड़कियों को इस मामले में ट्रेन करना है। दूसरा, बेसिक सेल्फ डिफेंस जरूरी है और उसको सीखना भी चाहिए, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है असर्टिव कम्युनिकेशन, यानी स्पष्ट और दृढ़ आवाज में नहीं कहना, ये बहुत जरूरी है। तीसरी बात, माँ बाप को भी लड़कियों के लोकेशन या फोन चेक करने से ज्यादा उन्हें डिजिटली रिस्पॉन्सिबल करना चाहिए।
2: ग्रेट,
0: आजकल के टाइम में डिजिटली
2: जरूरी
0: है।
1: ऑनलाइन स्ट्रेंजर्स, साइबर फ्रॉड, इन अप्रोप्रिएट मैसेजेस, यानी जो मैसेजेस ठीक ना हो उन्हें इन अप्रोप्रिएट कहते हैं, और प्राइवेसी के बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए। चौथा, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं, हम जिन पर भरोसा करते हैं उन लोगों के कॉन्टैक्ट्स, लोकल इमरजेंसी सर्विसेस, इन सब की जानकारी बच्ची के हाथ में होना चाहिए।
0: जी।
1: और सबसे महत्वपूर्ण, अगर कोई लड़की किसी अनकंफर्टेबल या अनसेफ एक्सपीरियंस के बारे में बताती है, तो हमारा सबसे पहला रिस्पांस क्या हो जाता है, तुम वहां गई ही क्यों? सबसे पहली बात हम ये पूछ लेते हैं।
0: जी,
1: गलत। हमको क्या पूछना चाहिए? सबसे पहला सवाल हमारी तरफ से ये होना चाहिए, तुम ठीक तो हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मैं हूँ तुम्हारे साथ। सेफ्टी सिर्फ लड़की की जिम्मेदारी नहीं होती है, सुरक्षित वातावरण बनाना पूरी समाज की जिम्मेदारी है, ये मेरा कहना है। लड़की को सेल्फ डिफेंस सिखाओ और उसकी बात सुनो, उसकी बात मत काटो। सबसे पहले उसको बोलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
2: इसके ऊपर मैं एक चार कविताएं की लाइंस सुनाना चाहती हूँ आपको। लक्ष्य हमारा नेक है तो कांटों पर भी चलना होगा।
0: जी।
2: लक्ष्य हमारा नेक है तो कांटों पर भी चलना होगा, चाहे कितनी हो अंगारे, चाहे कितनी हो अंगारे, अंगारों को उगलना होगा। पल पल जलते इस जीवन में, पल पल जलते इस जीवन में, मान अपमान के होंगे तेवर, सारे तेवर भस्मसात कर लक्ष्य हमारा पाना होगा, लक्ष्य हमारा पाना होगा।
0: विशाखा जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह कविताओं के जरिए अपनी बातें रखी हैं। विशाखा जी, आपने अंतर्राष्ट्रीय मंचों को भी देखा है और भारत में भी काम किया है। वैश्विक स्तर पर बालिकाओं और भारतीय बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों में आपको क्या प्रमुख फर्क महसूस होता है?
2: भारत के बाहर की बालिकाओं से भारतीय बालिका बहुत सुरक्षित है और बहुत अच्छा जीवन उनका चल रहा है।
0: जी।
2: You will not believe, in CSW conference when we communicated with women from other countries, it was shocking. क्योंकि पूरे विश्व से वहाँ लोग आते हैं, हमारे यहाँ तो मुफ्त शिक्षा दी जाती है बालिकाओं को।
0: जी, फ्री एजुकेशन।
2: फ्री एजुकेशन है। कुछ कुछ देशों में तो लड़कियों को का पढ़ना भी हराम है। मतलब आप सोच नहीं सकेंगे कि एक मोहतरमा जो पाठशाला चलाती है, उन पर और उनके शिक्षक तथा विद्यार्थियों पर जो जुल्म ढाए जाते हैं, इनको शब्दों में आप बयां नहीं कर सकते।
0: जी।
2: बहुत गुस्सा आता है, बहुत बुरा लगता है ये सब देखते हुए। लेकिन जब भी हम युद्ध परिस्थितियां देखते हैं, तो सबसे बुरी हालत उस देश के महिलाओं की और छोटे बच्चों की।
0: जी हाँ जी।
2: तो चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, और उन बच्चों के नाजुक दिमाग पर युद्ध का बहुत बुरा असर होता है।
0: शांति जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आजकल स्कूलों और सोसाइटियों में बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस के अनेक प्रशिक्षण दिए जाते हैं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग काफी है हमारी बालिकाओं के लिए?
1: बिल्कुल नहीं। सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा जरूरी है, लेकिन सिर्फ सेल्फ डिफेंस पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आत्मरक्षा और मौजूदा परिस्थिति, जिसको कहते हैं फिजिकल सिचुएशन, जहां जिस सिचुएशन में बच्चियां हैं,
0: जी,
1: उससे निकलने में मदद तो कर सकती है, लेकिन अनसेफ सिचुएशन सिर्फ फिजिकल नहीं होता है।
0: जी।
1: कई बार प्रेशर्स इमोशनल होते हैं, जैसे भावनात्मक दबाव, कभी वर्क प्लेस हरासमेंट, जिसको कहते हैं कार्यस्थल पर उत्पीड़ित होना,
0: जी,
1: हो सकता है कभी ऑनलाइन अब्यूज होता हो, ऑनलाइन दुर्व्यवहार होता हो, कभी कोई

0: अननोन पर्सन जिसको हम जानते नहीं है सीमा लांघता है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? सेफ्टी चार हिस्सों में देखनी चाहिए। एक तो फिजिकल सेफ्टी है, यानी हम जिस परिस्थिति में हैं वहां पे हम कितने सेफ सुरक्षित हैं
1: जी।
0: एक इमोशनल सेफ्टी भावनात्मक सुरक्षा, एक डिजिटल सेफ्टी जिसको ऑनलाइन सुरक्षा कहते हैं, और एक आर्थिक सुरक्षा फाइनेंशियल सेफ्टी भी होनी चाहिए।
1: जी।
0: लड़के को मार्शल आर्ट्स जरूर सिखाइए, लेकिन साथ में यह भी सिखाइए कि बाउंड्री क्या होती है और उसे कम्युनिकेट कैसे करते हैं, या उसको कैसे हम सामने वाले को समझाते हैं कि हमने ये बाउंड्री तय की है हमारे लिए। उसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यानी आर्थिक आत्मनिर्भरता और बेसिक मनी मैनेजमेंट सिखाना चाहिए
1: जी।
0: ताकि हर सिचुएशन में वो अपने आप को डिफेंड कर सके। उसे यह कॉन्फिडेंस दीजिए कि अगर कोई गलत व्यवहार हो तो वो कोई ट्रस्टेड पर्सन यानी जिसके ऊपर उसे भरोसा है, या फिर अधिकारियों के पास अथॉरिटी के पास जाइए, या सपोर्ट सिस्टम जो उचित समझे उस तक पहुंचिए। और सबसे महत्वपूर्ण है, उसे गिल्ट मत दीजिए, उसे ये मत सोचने पर मजबूर मत कीजिए कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया ना। सेफ्टी का पूरा बर्डन जो है, सुरक्षा का जो बर्डन है, लड़की के कंधों पर नहीं है, पूरी समाज पर है। और वो सिखाना ही लड़की को एम्पावर करना होता है कि सुरक्षा सिर्फ मेरी उत्तरदायित्व नहीं है, पूरे समाज को मुझे हेल्प करना चाहिए, तब जाके लड़की एम्पावर होती है।
2: जी। उद्देश्य में कि हम लोग भारतीय स्त्री शक्ति से हैं, भारतीय स्त्री शक्ति पूरे भारतवर्ष में काम कर रही है और अभी बियॉन्ड बॉर्डर्स से वी आर वर्किंग इन वेरियस कंट्रीज ऑल्सो। तो इसमें हम लोग बालक बालिका किशोर किशोरी समुपदेशन करते हैं, इसके माध्यम से हम विद्यालयों में संवाद और व्याख्यान करते हैं
1: जी,
2: ताकि बालिकाएं मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत बने, वे अपने मूल्य को पहचाने, सोच समझकर निर्णय ले और दबाव या कठिन परिस्थितियों में भी अपनी बात दृढ़ता से रख सके। साथ ही सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी बेटियों पर नहीं डाली जा सकती
1: जी।
2: परिवार विद्यालय और समाज को भी सुरक्षित वातावरण बनाना होगा और लड़कों को सम्मान तथा मर्यादा सिखानी होगी
1: जी।
2: बेटियों को आत्मरक्षा के कौशल के साथ आत्मविश्वास विवेक और समाज का साथ भी चाहिए
1: जी। बिल्कुल सही कहा आप दोनों ने। विशाखा जी, एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि देश के कई हिस्सों में कन्या भ्रूण हत्या जैसे सामाजिक अभिशाप की चर्चा आज भी होती है, इस पर आप क्या कहेंगी?
2: जरा सोचिए, एक बच्ची जिसने अभी दुनिया भी नहीं देखी
1: जी,
2: जिसकी पहली पुकार अभी गूंजी भी नहीं, उससे जीने का अधिकार छीन लिया जाए केवल इसलिए क्योंकि वह बेटी है। कन्या भ्रूण हत्या केवल एक जीवन का अंत नहीं है, हमारी संवेदना और असमानता के विश्वास पर गहरी चोट है। हम शक्ति की आराधना करते हैं, फिर बेटी के जन्म से डर क्यों? बेटा बेटी में भेद क्यों? बेटी को जीने का अधिकार किसी उपलब्धि के कारण नहीं चाहिए, उसे यह अधिकार इसलिए है क्योंकि वह इंसान है। इस बदलाव की शुरुआत घर से हो। गर्भवती महिला पर बेटे को जन्म देने का दबाव न डाले, उसके साथ खड़े हो। बेटी के जन्म पर भी वही खुशियां मनाएं, वही अवसर दे। हर हर की धरा हरा है ये सदा का पति धरा है, हर हर की हरा है ये सदा का पति धरा है, ये ही अग्नि, ये ही परीक्षा, ये ही तो जगत जननी है। फिर भी इसके जन्मदिन पर रोता ये संसार है, रोता ये संसार है, लेकिन अब ना कोई रोएगा, अब ना कोई रोएगा, अब ना कोई कोसेगा, अब तो तेरे हुक्म से ही चांद और सूरज चमकेगा, चांद और सूरज चमकेगा। यह विश्वास दिलाना है हमको, हर माताओं को जिन्हें तैयार किया जाता है भ्रूण हत्या के लिए, और हर वह बेटी को जो इस सब अग्नि परीक्षा से निकल के एक अच्छा जीवन पाती है।
1: वाह, क्या खूब कहा आपने विशाखा जी, अपने कविताओं के जरिए आपने बेटियों के बारे में इतनी अच्छी बातें कही जी। शांति जी, बेटियों को अपने आने वाले भविष्य और करियर के लिए खुद को कैसे तैयार करना चाहिए?
0: मैं कहूंगी पेरेंट्स से
1: जी,
0: अपनी बेटी का फ्यूचर का पूरा रास्ता आप मत बनाइए, उसे रास्ता चुनने सिखाइए, बेटी को सक्षम बनाइए कि वो अपना रास्ता खुद चुने। कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स बहुत जरूरी है। सबसे पहला है कम्युनिकेशन, अपनी बात

0: दृढ़ता से रखना, कॉन्फिडेंटली रखना। दूसरा, जैसे मैंने पहले कहा था, फाइनेंशियल लिटरेसी, पैसे कैसे कमाना है, उसे कैसे बचाना है, इन्वेस्ट कैसे करना है और खुद कैसे डिसीशंस लेना है, इस पर बच्ची को तैयार करिए। तीसरा, डिजिटल लिटरेसी और उसकी सुरक्षता
1: जी
0: कैसे करना है। चौथा, इमोशनल इंटेलिजेंस, रिजेक्शन, फेलियर और क्रिटिसिज्म, उसे कैसे संभालना है। ये सारी चीजें हम रोजमर्रे की जिंदगी में अनुभव करते हैं, तो इसे हम कैसे हैंडल करें, कैसे संभाले अपने आप को, ये सिखाइए। और डिसीशन मेकिंग, हर छोटी बात के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर होना गलत है, ये सिखाइए बच्ची को। उसे कहिए कि तुम इंडिपेंडेंटली अपने डिसीशंस लो। और छठी बात, हेल्थ अवेयरनेस, अपने शरीर और स्वास्थ्य को प्रायोरिटी दीजिए। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात, बेटी को फेलियर ना समझिए, उसे फेलियर समझने से बचाइए। ना खुद आप उसको फेलियर बोलिए, ना उसको फेलियर जैसे महसूस करने दीजिए। जिंदगी में फेलियर नाम की कोई चीज होती नहीं है, या तो सक्सेस होता है या फिर लर्निंग होती है।
1: जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने।
0: जो लाइट बल्ब थॉमस अल्वा एडिसन ने 9999 बार वो फेल नहीं हुए, उन्होंने कहा इतनी बार तो मैंने ये सीखा कि क्या नहीं करना चाहिए।
1: जी,
0: तो जिंदगी में अगर आप सक्सेस नहीं पा रहे हो तो वो एक सीख की तरह लो, वो एक लर्निंग है, फेलियर नहीं है। सक्सेस और लर्निंग सिर्फ दो चीजें हैं। फेलियर नाम को अपनी जिंदगी से हटा दीजिए, ये सिखाइए आप अपने बच्चों को। उसे छोटे छोटे निर्णय लेने दीजिए, कभी गलती होगी लेकिन वह गलती उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाएगी। हमें बेटियों के लिए जिंदगी आसान नहीं बनाना है, हमें उन्हें जिंदगी की चुनौतियों के लिए सक्षम बनाना है।
1: जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, समाज में मौजूद लैंगिक भेदभाव को कम करने के लिए पुरुषों और लड़कों की क्या भूमिका होनी चाहिए?
2: शायद हमें इसी बदलाव की आवश्यकता है।
1: जी,
2: पीढ़ियों से हम पुरुषों से कहते आए हैं, स्त्रियों की रक्षा करो, जब खतरा हो तब संरक्षण महत्वपूर्ण है। लेकिन कोई स्त्री अपना पूरा जीवन किसी के संरक्षण में ही नहीं बिता सकती है।
1: जी,
2: हर बार हमें संरक्षण नहीं चाहिए। बेटी बड़ी होती है, बहन आगे बढ़ती है, पत्नी का व्यक्तित्व विकसित होता है, माँ की उम्र ढलती है, रिश्तों को भी बदलना चाहिए।
1: जी,
2: संरक्षण को सम्मान में बदलना होगा, सम्मान को विश्वास में बदलना होगा, विश्वास को साझेदारी में बदलना होगा, और उस साझेदारी की अभिव्यक्ति अंततः इन शब्दों में होनी चाहिए, मुझे विश्वास है कि तुम यह संभाल सकती हो।
1: जी,
2: मेरी जरूरत हो तो बताना। मैं पिता से कहना चाहूंगी, अपनी बेटी की केवल रक्षा मत कीजिए, उसे तैयार कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए और उसे उड़ने दीजिए।
1: जी,
2: खुले आसमान में उड़ने दीजिए। एक भाई से कहूंगी, अपनी बहन पर पहरा मत लगाइए, ऐसे व्यक्ति बनिए जिसे वह बिना डर के फोन कर सके। मतलब उसे कुछ प्रॉब्लम आया तो बिना डर के अपने भाई को फोन कर सके। एक मित्र से कहना चाहूंगी, क्योंकि आजकल तो को एजुकेशन है, मित्र तो हर एक को है, स्नेह को अधिकार मत समझिए, हर बार स्नेह अधिकार नहीं होता है, उसके निर्णयों का सम्मान कीजिए। हो सकता है उसके उसके मन में आपके लिए जगह नहीं है, लेकिन वो मानती है कि आप मेरे अच्छे दोस्त हो, अच्छे मित्र हो।
1: शांति जी, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर?
0: मेरा पुरुषों से बहुत सीधा और सकारात्मक आह्वान है, प्रोटेक्टर्स मत बनिए, पहले पार्टनर्स बनिए।
1: जी,
0: समानता लाइए अपनी जिंदगी में। बेटी की सुरक्षा केवल उसकी माँ या परिवार की जिम्मेदारी नहीं है, पुरुषों की भूमिका भी बहुत महत्व रखती है। एक पिता अपनी बेटी को जितना कॉन्फिडेंस देता है, उतना ही वह अपने बेटे को भी यह सिखाए कि सम्मान क्या होता है। अपने बेटे को बताइए, ना का मतलब ना है, बाउंड्रीज का सम्मान करना कमजोरी नहीं है, मैच्योरिटी है, यानी परिपक्वता है।
1: जी,
0: किसी लड़की की ड्रेस, फ्रेंडशिप या लाइफस्टाइल उसके प्रति अनादर का लाइसेंस नहीं होता है। उसे रिस्पेक्ट करिए, हर हाल में रिस्पेक्ट करिए। और पुरुषों से मैं एक और बात कहूंगी, जब आपके सामने किसी महिला के साथ गलत व्यवहार हो रहा हो तो केवल दर्शक मत बनिए, आवाज उठाइए, सपोर्ट कीजिए, सही का साथ दीजिए। क्योंकि महिलाओं को सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी समाज में हर किसी की है। एक

0: बेहतर समाज तब बनेगा जब हम बेटियों को स्ट्रांग बनाएंगे और बेटों को सेंसिटिव, रिस्पॉन्सिबल और रिस्पेक्टफुल बनाएंगे, यानी संवेदनशील, जिम्मेदार। जब लड़कों को हम ये सब बनाएंगे तब जाकर समाज सुरक्षित रहेगा। और शायद यही सबसे बड़ा माइंड शिफ्ट है, यानी सोच में बदलाव, या यूं कहिए दृष्टिकोण में परिवर्तन।
1: जी,
0: ये एक अकेले का काम नहीं है, हर किसी को इसमें योगदान करना है। बेटियों को बदलने से पहले समाज की सोच बदलनी होगी, क्योंकि जब समाज देखेगा कि बेटी शिक्षित है, कमा सकती है, माँ बाप का सहारा बन सकती है और अपने जीवन के निर्णय खुद ले सकती है, तब वो समाज हर किसी के रहने लायक होगा।
1: श्रोताओं, बातों ही बातों में पता ही नहीं चला समय की समाप्ति हो चली है। कार्यक्रम को विराम देने से पहले मैं आप दोनों आदरणीय मेहमानों से एक अंतिम और बेहद महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहूंगी। यदि आपको देश की हर बालिका को केवल एक संदेश देना हो तो आप क्या कहना चाहेंगी? विशाखा जी, पहले आप बताइए।
2: नेतृत्व तब शुरू नहीं होता जब कोई हमें पद देता है।
1: जी,
2: यह तब शुरू होता है जब हम अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करना सीख जाते हैं। बदलती है हाथ की लकीरें यदि जुनून है आंखों में, बदलती है हाथ की लकीरें यदि जुनून है आंखों में, बदल कर करवट जरा मोड़ दे हवा का रुख, बदल कर करवट जरा मोड़ दे हवा का रुख यदि जुनून है तेरी आंखों में। ख्वाबों ख्वाहिशों की दुनिया दे रही ललकार है, ख्वाबों ख्वाहिशों की दुनिया दे रही ललकार है, कर फतह मंजिल मंजिल यदि जुनून है तेरी आंखों में, यदि जुनून है तेरी आंखों में।
1: बहुत ही सुंदर कविता कही विशाखा जी आपने। शांति जी, आप बताइए आपका क्या संदेश रहेगा?
0: मैं बालिकाओं से ये कहूंगी, अपनी जिंदगी में सबसे पहला स्थान आप अपने आप को दीजिए। माता पिता, भाई बहन, शादी के बाद सास ससुर, हस्बैंड, हर एक की अपनी अपनी जगह है आपकी जिंदगी में। कोई सामने से आपको अपनी जिंदगी में फर्स्ट प्लेस थाली में परोसकर नहीं देगा। अपनी जिंदगी में फर्स्ट स्पेस आपका होना चाहिए।
1: बहुत ही अच्छी बात कही आपने शांति जी। आज की चर्चा से स्पष्ट है कि सशक्तिकरण केवल एक दिन का विषय नहीं, बल्कि परिवार और समाज की निरंतर जिम्मेदारी है। जब बेटियों को शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, स्वास्थ्य और समान अवसर मिलते हैं, तभी वे अपने परिवार, समाज और राष्ट्र का भविष्य उज्जवल करती है। विशाखा जी और शांति जी, आप दोनों ने अपने व्यस्त समय से वक्त निकाला और इतने महत्वपूर्ण विषय पर अपने बहुमूल्य विचार साझा किए, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
0: शुक्रिया।
3: श्रोताओं, ये थी इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड अर्थात अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर श्रीमती विशाखा समीर माशंकर और श्रीमती शांति मोदली के साथ कृष्णा कुमारी की बातचीत। मित्रों, जब हर बेटी को शिक्षा, सुरक्षा और समान अवसर मिलता है, तभी एक सशक्त परिवार, एक सशक्त समाज और एक सशक्त देश का निर्माण होता है। इसी संदेश के साथ आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले हिंदी कार्यक्रम में एक नए विषय, नए विचारों और नए उत्साह के साथ इसी तरंग पर। तब तक के लिए जयदीप को दीजिए अनुमति, सुनते रहिए आकाशवाणी हैदराबाद। नमस्कार।

0: जाए। एक अपील पर मरकज को नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सभी फरीकों के दलाइल की समाअत करेगी और इस बात को यकीनी बनाएगी कि किसी तरह की परेशानी पैदा न हो। मज़कूरा अपील में सुप्रीम कोर्ट से अपनी हिदायत की मुबैना खिलाफ वर्जी के मामले पर हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की दरख्वास्त की गई है। नेपाल में गोरखा जिले में आज सुबह बूढ़ी गंडकी दरिया में पानी की सतह में अचानक हुए इजाफे के सबब कई मकानात बह गए, जिसके बाद हुकाम ने लोगों से आसपास के इलाके छोड़कर महफूज इलाकों में मुंतकिल होने के लिए कहा है। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक जगत के मुकाम पर 5 से 7 मकानात बह गए, जबकि कई दिगर मकानात के भी पानी में बह जाने का अंदेशा है। अब तक किसी भी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। नेपाल में सैलाब के बाद बिहार के सरहदी ज़िले मगरबी चंपारण में चौकसी बरती जा रही है। ज़िला मजिस्ट्रेट तरनजोत सिंह ने बताया कि ज़िले के गंडक दरिया में पानी की सतह में इजाफे की तवक्को नहीं है, ताहम एहतियाती इकदाम के तौर पर नशीबी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है।
1: लोगों ने अलर्ट किया है, लेकिन पानी कोई बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, देवघाट पर भी मॉनिटर कर रहे हैं। एक देवघाट से भी पीछे काली खोला करके जगह है, वहां पर पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ के लगभग 50 सेंटीमीटर बढ़ के अब फॉल करना शुरू कर गया है।
0: जिला मजिस्ट्रेट के मुताबिक नेपाल के कालीकोला में पानी की सतह में सिर्फ 50 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल के कालीकोला में पानी की सतह में कमी आनी शुरू हो गई है। देवी दुर्गा की आराधना का 9 रोज़ा फेस्टिवल नवरात्रि आज मजहबी जोशो जज्बे के साथ शुरू हो गया है। नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के 9 मुख्तलिफ अवतार में पूजा अर्चना की जाती है। पहले दिन देवी दुर्गा की मां शैलपुत्री के तौर पर पूजा अर्चना की जाती है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज महाराजा अग्रसेन को उनके योम पैदाइश के मौके पर खराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि महाराजा अग्रसेन समाजी खिदमात, समाजी हमाहंगी के अलमबरदार थे, जिनकी ज़िंदगी और नज़रियात समाज को इंसानियत का पैगाम देते रहेंगे। गुजरात में थारा और ओखा म्यूनसिपल्टियों के साथ साथ गांधीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन समेत बलदियाती इदारों के इंतखाबात के लिए पोलिंग पुरअमन तौर पर जारी है। वोटिंग आज सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। म्यूनसिपल चुनाव के साथ साथ खेरालू, छोटा उदयपुर और बायड म्यूनसिपल्टियों के खाली सीटों के लिए ज़िमनी चुनाव भी हो रहा है। इसके अलावा देवभूमि, द्वारका जिला पंचायत और पडाधरी तालुका पंचायत की सीटों के लिए भी ज़िमनी चुनाव में वोट डाले जा रहे हैं। भारत और वेस्टइंडीज़ के दरमियान तीसरा T20 मैच आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की सीरीज़ में दोनों टीमें एक एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले में पूनमल्ली वडापलानी रेल पट्टी का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म आज ही चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज़ करने वाले हैं। भारत ने सऊदी अरब में रियाज के हवाई अड्डे पर बार बार हमले होने की मजम्मत की है और जानो माल के नुकसान पर तश्वीश का इजहार किया है। दिल्ली में खसूसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की अदालत ने CJP के अभिजीत दीप के, आशुतोष रांका और सौरभ दास को रिहा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्काम को हिदायत दी है कि पुरअमन तरीके से इकट्ठा होने वाले लोगों की गैर कानूनी हिरासत की रोकथाम की जाए और लोगों की आज़ादाना नकलो हरकत को यकीनी बनाया जाए। नेपाल के गोरखा जिले में कई मकानों के पानी में बह जाने के बाद बूढ़ी गंडकी दरिया के इलाके में लोगों को मुंतकिल किए जाने के ताल्लुक से वार्निंग जारी की गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Good afternoon. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Punnamalli Vadapalani stretch of Phase 2 of Chennai Metro Rail project. Prime Minister to launch development projects worth over 13,000 crore rupees in Chennai this afternoon. India condemns repeated attacks on Riyadh Airport expresses concern over loss of lives

0: कार्यों को शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हुए लोगों की अवैध हिरासत रोकने, सामान्य आवाजाही और निर्बाध इंटरनेट सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। नेपाल ने गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में पानी बढ़ने से कई घरों के बह जाने को देखते हुए लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा और भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 मैच आज इंदौर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई पहुंचे। वे आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय, उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों, अन्ना द्रमुक महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी सहित अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने चेन्नई में रोड शो किया और पोरूर पूनमल्ली मेट्रो रेल सेवा को रवाना किया। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो की यात्रा की। लगभग 4.25 किलोमीटर लंबे पुनमल्ली पोरूर कॉरिडोर में बिना ड्राइवर के डबल डेकर मेट्रो संचालन के लिए उन्नत सिग्नलिंग प्रणाली लगाई गई है। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें पलानी, वेल्लोर छावनी, अम्बास समुद्रम, परमाकुडी और नमक्कल में स्थित 5 अमृत स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास किया गया है। श्री मोदी परिसर में बना सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य समुद्री अवसंरचना को मजबूत करना, माल ढुलाई क्षमता का विस्तार करना और लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करना है। प्रधानमंत्री चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की मनाली रिफाइनरी में ल्यूब ऑयल बेस स्टॉक्स परियोजना की शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कामराजर बंदरगाह पर अतिरिक्त कोयला बर्थ परियोजना का उद्घाटन करेंगे। वे जयगोपाल गरुड़िया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में भी शामिल होंगे। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित लोगों को अवैध रूप से हिरासत में न लेने और यातायात को सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार बनाए रखने और इंटरनेट सेवा भी निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के कथित उल्लंघन के लिए अवमानना कार्यवाही करने वाली याचिका पर न्यायालय ने कहा कि वो सभी पक्षों की बात सुनेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि किसी को कोई असुविधा ना हो। कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को रिहा कर दिया गया है। इन तीनों को कल एहतियातन हिरासत में लिया गया था। नई दिल्ली में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत ने आज उनकी रिहाई का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस के अनुसार तीनों ने एक वर्ष तक शांति बनाए रखने का भरोसा दिलाया है। उन्हें 50,000 रूपये की जमानत पर रिहा किया गया है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके को उनकी दादी के निधन की सूचना कल ही दे दी गई थी। पुलिस के अनुसार दिपके को मानवीय आधार पर उनके पैतृक शहर जाने के लिए हर संभव सहायता की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने ये सहायता लेने से इनकार कर दिया। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद सभी 45 मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल है। उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि सभी रेलगाड़ियां निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं।
2: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी, ताकि यात्रियों को यह सुविधा न हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली और निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और

0: भारत अटूट वचनबद्धता से प्रेरित रही है। सेवा और सुशासन को केंद्र में रखकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समेकित विकास और सामाजिक सशक्तिकरण का ये प्रयास लोगों के जीवन को परिवर्तित कर रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में चर्चा पद्म पुरस्कारों की, जिसकी चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने के लिए व्यापक बदलाव किए गए।
1: 2014 के बाद पद्म पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया में व्यापक बदलाव किया गया। देश के इस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार को अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाया गया है। अब देश का कोई भी नागरिक किसी भी योग्य व्यक्ति को नामांकित कर सकता है। अब इसमें लोगों के पास खुद को भी नामांकित करने के अवसर हैं। सभी नामांकन पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं। इन व्यापक सुधारों ने पद्म पुरस्कार को एक सीमित दायरे से निकालकर जन पुरस्कार के रूप में बदल दिया और दूर दराज, ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के जमीनी स्तर पर असाधारण काम करने वाले गुमनाम नायकों को सम्मानित करने का नया मानक स्थापित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के एक एपिसोड में पद्म पुरस्कारों का उल्लेख करते हुए कहा कि अब ये पीपुल्स पद्म बन चुका है।
2: पद्म सम्मान का सिस्टम पूरी तरह से बदल चुका है, अब ये पीपल्स पद्म बन चुका है। पद्म सम्मान देने की व्यवस्था में कई बदलाव भी हुए, अब इसमें लोगों के पास खुद को भी नॉमिनेट करने का मौका रहता है।
1: पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित उत्तर प्रदेश की मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने पद्म पुरस्कारों की प्रक्रिया को आसान किए जाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की।
3: भारत सरकार ने निसंदेह 12 वर्षों से ये प्रयास किया है कि भारत की मिट्टी के जो सच्चे सेवक है उनको सम्मान मिले और उनके बारे में बताना, मुझे लगता है कि इसकी जितनी भी सराहना करें वो कम है।
1: उत्तर प्रदेश के वाराणसी के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका और वर्ष 2026 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित मंगला कपूर ने भी पद्म पुरस्कारों की प्रक्रिया को आसान किए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की और कहा कि अब एक आम आदमी के मन में यह विश्वास मजबूत हुआ है कि वह किसी भी क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य कर रहा है तो उसे भी पद्म पुरस्कार मिल सकता है। प्रेमचंद्र गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।
0: भारत ने कहा है कि नई दिल्ली में हाल की घटनाओं के संबंध में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की टिप्पणियां अनुचित और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य हस्तक्षेप हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां संविधान शांतिपूर्ण प्रयोजन से एकजुट होने की अनुमति देता है, लेकिन अन्य लोकतांत्रिक देशों की तरह भारत में भी इन अधिकारों का प्रयोग सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है। भारत ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आम नागरिकों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। भारत ने सऊदी अरब की संप्रभुता की रक्षा के लिए वहां की जनता और सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त की। भारत ने आशा व्यक्त की है कि क्षेत्र में जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल होगी। सऊदी अरब ने एक बयान में बताया कि हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 लोग घायल हैं। मृतकों में 4 सऊदी नागरिक और 8 विदेशी नागरिक हैं। विदेशी मृतकों में बांग्लादेश के 2 और अमेरिका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, फिलिस्तीन तथा सूडान का एक एक नागरिक है। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बताया कि दम्माम स्थित किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी हवाई हमला हुआ। एक रिपोर्ट।
4: शनिवार को रियाद एयरपोर्ट पर हूतियों का हमला इस हफ्ते का तीसरा हमला था। यह पिछले करीब 10 साल में सऊदी अरब पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक था। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के अलर्ट सिस्टम से कोई खतरे का अलर्ट जारी नहीं हुआ था। शनिवार को रियाद आने जाने वाली करीब 260 फ्लाइट्स रद्द होने की खबर है। इस हफ्ते हुए पहले के हमलों में भी लोगों की जान गई थी और एयरपोर्ट पर खड़े सऊदी अरब के एक कमर्शियल विमान को नुकसान पहुंचा था। सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने दम्मम एयरपोर्ट और अल खर्ज को भी निशाना बनाने की कोशिशों जानकारी दी है। गठबंधन ने सऊदी क्षेत्र पर हुए इन हमलों का कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: अमेरिका यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब की सैन्य कार्रवाई में शामिल होने पर विचार कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त करने के इच्छुक हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने शांति स्थापित करने के अवसरों को बार बार गंवाया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

ये आकाशवाणी है। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में पानी अचानक बढ़ने के बाद तटवर्ती बस्तियों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। आज तड़के जलस्तर बढ़ने से कई मकान बह गए। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जलस्तर में अचानक वृद्धि का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस बीच नेपाल में बाढ़ को देखते हुए बिहार के सीमावर्ती जिले पश्चिम चंपारण में सतर्कता बढ़ा दी गई है। हालांकि

0: संभावना नहीं है। हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, देवघाट पर भी मॉनिटर कर रहे हैं। एक देवघाट से भी पीछे काली खोला करके जगह है, वहां पर पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ के लगभग 50 सेंटीमीटर बढ़ के अब फॉल करना शुरू कर गया है।
1: गुजरात में गांधीनगर, ओखा और थारा नगर निगम चुनाव तथा खिरालू, छोटा उदयपुर और बायद नगर निगम उपचुनाव, देवभूमि द्वारका जिला पंचायत, पड़धारी सतलासना और हरिज तालुका पंचायत के उपचुनावों के लिए शांतिपूर्ण मतदान जारी है। गांधीनगर नगर निगम के 11 वार्ड में अब तक औसतन 31.9% मतदान दर्ज किया गया है। शारदीय नवरात्रि का महापर्व आज से शुरू हो गया है। 9 दिन का ये धार्मिक उत्सव मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का प्रतीक है, जिसे लोग उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने कल कोलकाता में ईडन गार्डन्स में महालया के अवसर पर आयोजित भव्य उमा आगमोनी कार्यक्रम के साथ देवी दुर्गा के आगमन का स्वागत किया।
2: कोलकाता में देवी पक्ष की शुरुआत के साथ ही दुर्गा पूजा की रौनक बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने शनिवार को ईडन गार्डन्स में उमा आगमन कार्यक्रम आयोजित किया। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इस कार्यक्रम के साथ दुर्गा पूजा उत्सव की औपचारिक शुरुआत की। 3000 ढाकियों ने एक साथ पारंपरिक ढोल बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ड्रोन शो में आसमान पर देवी दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी स्वरूप की छवि दिखाई गई। उत्सव की रौनक रोड पर भी देखने को मिली, जहां विभिन्न पंडालों में पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया गया। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कामना की कि मां दुर्गा का आशीर्वाद सभी को शक्ति, साहस और सद्बुद्धि प्रदान करे। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि देवी मां का आशीर्वाद देशवासियों में धैर्य और आत्मविश्वास की भावना को प्रेरित करेगा। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की इस श्रृंखला में दोनों टीम एक एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के पूनमल्ली वडापलानी खंड का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत ने रियाद हवाई अड्डे पर हमलों की निंदा की और जानमाल तथा संपत्ति के नुकसान पर चिंता व्यक्त की। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हुए लोगों की अवैध हिरासत रोकने, सामान्य आवाजाही और निर्बाध इंटरनेट सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। और भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 मैच आज इंदौर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी हैदराबाद केंद्रम।

घर बह गए। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। लगभग 50 लोगों को बचाया गया है और 10 लोग अब भी लापता हैं। खोज और बचाव अभियान जारी है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से इंदौर में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर हैं। अनमोल खरब ने तुर्की इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। अनमोल ने फाइनल में आकर्षी कश्यप को हराया। उधर मिस्र में उदयवीर सिद्धू ने निशानेबाजी विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया। लद्दाख पुलिस बाइक रैली टीम गुजरात में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए रवाना हो गई है। रैली का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, एकजुटता और नशा मुक्त भारत को बढ़ावा देना है। भारतीय नौसेना का जहाज सह्याद्री अभ्यास इंद्र 2026 में शामिल होने के लिए रूस के व्लादिवोस्तोक पहुंच गया है। ये द्विपक्षीय अभ्यास 13 से 18 अक्टूबर तक चलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गया और पांच लापता। काहिरा में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं दैनिक यात्रा आसान बनाएंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
1: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
0: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूनमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती हुई चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में ये समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
1: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। Today, the world is looking for solutions and you have the potential to provide those solutions.
0: प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
1: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे। Because this is your time, this is your opportunity. मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा भारत को खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।
1: भारत 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। हम 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी का सपना भी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले वर्षों में जब दुनिया के बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स भारत में होंगे, इसलिए भारत के युवाओं के पास अब प्लेटफॉर्म भी है, पोटेंशियल भी है और सपोर्ट भी है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए लोगों को अवैध हिरासत में नहीं लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार और इंटरनेट सेवा निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के दोहरे रवैये और सार्वजनिक मामलों पर चुनिंदा तरीके से प्रतिक्रिया देने के तरीके की आलोचना की है। भारत ने नई दिल्ली में कल की घटनाओं पर संगठन की टिप्पणियां खारिज कर दीं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संगठन की टिप्पणियों को गैर जरूरी और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार दखलंदाजी बताया। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत के पड़ोस में विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक प्रतिक्रियाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के दोहरे रवैये से संगठन की विश्वसनीयता घटती है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
2: We have seen certain remarks.
3: हमने कल की घटनाओं के बारे में मानवाधिकार

0: उच्च आयुक्त के कार्यालय की कुछ टिप्पणियों को देखा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां शांतिपूर्ण सभा करने के अधिकार की गारंटी संविधान में दी गई है। हमारे मजबूत संस्थान, स्वतंत्र न्यायपालिका और मीडिया इस अधिकार को सुरक्षित रखते हैं। हर लोकतंत्र की तरह भारतीय नागरिक सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस अधिकार का प्रयोग करते हैं।
1: पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी।
2: भारतीय जनता पार्टी ने सांसद और प्रोफेसर बिमोल अकोईजम के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर कांग्रेस की आलोचना की है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद बिमोल अकोईजम की सेवाएं समाप्त कर दी थीं। नई दिल्ली में पार्टी सांसद बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल उठाए।
3: जेएनयू ने पॉश एक्ट के तहत एक इंटरनल कमिटी बिठाई। इस कमिटी ने तमाम सबूतों, तमाम विटनेसेस और तमाम सर्वाइवर्स की विटनेस टेस्टिमनी के बाद, सारे के सारे तथ्यों की जांच करने के बाद तुरंत बिमोल अकोईजम को नौकरी से बर्खास्त किया। फेमिनिज्म कांग्रेस पार्टी के लिए केवल एक हैशटैग से शुरू होता है और जवाबदेही की दहलीज पर आकर समाप्त हो जाता है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जन सेवा से देश सेवा इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टिकोण के साथ भारत सरकार को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज विशेष श्रृंखला में बात औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति के लिए की जा रही पहल की।
4: पिछले कुछ वर्षों में सरकार धीरे धीरे भारत से ब्रिटिश शासन की निशानियों को हटाने की दिशा में काम कर रही है। 15 अगस्त 2022 को 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 25 वर्षों के लिए 5 संकल्पों यानी पंच प्रण की घोषणा की थी। दूसरे प्रण के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि नागरिकों के जीवन के किसी भी हिस्से में, यहाँ तक कि उनके मन के सबसे गहरे कोने या उनकी आदतों में भी गुलामी का कोई अंश नहीं होना चाहिए।
5: सैकड़ों साल की गुलामी ने जहाँ हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी।
4: देश को उपनिवेशिक विरासत से मुक्त करने और एक अलग भारतीय पहचान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई क्षेत्रों में कई कदम उठाए हैं। नई दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। भारतीय नौसेना ने पुराने ध्वज जिसमें सेंट जॉर्ज क्रॉस बना हुआ था की जगह वर्ष 2022 में अपना नया ध्वज अपनाया। सरकार ने वर्ष 2017-18 से रेल बजट को आम बजट में मिला दिया। इसके साथ ही वर्ष 1924 से चली आ रही एक परंपरा समाप्त हो गई। बीजेपी नेता राम माधव ने कहा,
6: वी लिव्ड एज अ नेशन, हम कम से कम 5000 वर्षों से एक राष्ट्र के रूप में जी रहे हैं। इतने लंबे इतिहास में हमने एक महान राष्ट्र, महान इतिहास, महान स्मारक, महान ऐतिहासिक स्थल बनाए हैं। वे सहस्त्राब्दियों से भारत की पहचान रही है। महान पहचान आज यही हो रहा है, यही वह है जिसे हम औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति कहते हैं,
1: डीकॉलोनाइजेशन।
4: सरकार ने ब्रिटिश शासन के दौरान प्रतिबंधित साहित्य को फिर से सामने लाने का भी प्रयास किया है। इसके तहत भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रतिबंधित कविताओं, लेखों और प्रकाशनों की एक सूची तैयार कर रहा है। ये सभी पहल एक ऐसे आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है जो अपनी सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र उत्सव आज पूरे देश में धार्मिक उत्साह और भक्तिभाव के साथ शुरू हो गया।

देवी दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रमुख मंदिरों में पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा लोगों को आत्मानुशासन और नैतिक मूल्य स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। ये महोत्सव नारी के सामर्थ्य, साहस और दृढ़ता में विश्वास को मजबूत करता है।

0: भारत में त्योहारी खरीदारी सीजन की शुरुआत जोरदार रही। एक रिपोर्ट के अनुसार देश के प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने फेस्टिव सीजन में पहले दो दिनों में करीब 24,000 करोड़ रुपए की बिक्री की है। इस दौरान लोगों ने स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू उपकरणों और फैशन उत्पादों की जमकर खरीदारी की। त्योहारी सीजन के पहले दो दिन की बिक्री सामान्य दिनों की तुलना में लगभग 6 गुना अधिक है। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडकी नदी में अचानक बाढ़ के बाद अब तक 9 विदेशी नागरिकों सहित 80 से अधिक लोगों को बचा लिया गया है। 5 लोग अब भी लापता हैं। आज सवेरे लगभग 4 बजे आई बाढ़ में घर और पुल बह गए और कई जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण आपातकाल घोषित कर दिया है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने प्रांत में संवैधानिक व्यवस्था के विफल होने पर आपातकाल लागू किया। इस कदम से पाकिस्तान की संघीय सरकार को मुख्य कार्यकारी और विधायी शक्तियां अपने हाथ में लेने का अधिकार मिल गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन ऊर्जा केंद्रों पर हमले रोकने के लिए सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि युद्ध विराम तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उन्होंने दोनों देशों से समझौते का पालन करने का आग्रह किया। इस बीच रूस और यूक्रेन दोनों ने ही युद्ध विराम पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। सऊदी अरब के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूती विद्रोहियों के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 अन्य घायल हुए। भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लोगों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। इस बीच विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास घायल 11 भारतीयों की मदद के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। दूतावास उनकी सहायता के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। मिस्र में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में 240.6 अंक के साथ अपना पहला सीनियर विश्व खिताब जीता। अनमोल खरब ने तुर्की इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। अनमोल ने फाइनल में आकर्षी कश्यप को हराया। इंदौर में भारत ने वेस्टइंडीज को तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 224 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 10 विकेट पर 223 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने सर्वाधिक 69 रन बनाए। 5 मैच की श्रृंखला में दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने कल हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बिजली चमकने के साथ बरसात होने और तेज हवा चलने का अनुमान व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। भारत की प्रगति को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों से प्रेरित बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश युवाओं को अपार अवसर प्रदान कर रहा है। देश के विकास के लिए युवाओं से अपनी क्षमताएं पहचानने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल लोगों की अवैध हिरासत रोकने और सुचारू यातायात जारी रखने के निर्देश दिए। भारत ने नई दिल्ली में हुई घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की टिप्पणियां खारिज की। इसे दोहरा मापदंड और अपने आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप बताया। और काहिरा में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches development projects worth over 13,000 crore rupees in Tamil Nadu, stresses India's progress draws strength from rich cultural heritage and scientific achievements. Prime Minister Modi asserts India offers immense opportunities for youth, urges them to realize their potential for nation's development. Supreme Court directs authorities to ensure unrestricted movement of people and peaceful gatherers are not illegally detained. India rejects UN Rights Body's remarks on New Delhi events, cites double standards and unwarranted interference in its internal affairs. Flash floods hit Gorkha district of Nepal, 80 people rescued so far, 5 missing. An Indian shooter, Uday

रविवासर या संगीत सभा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है पंडित जडेश हुगार जी का तबला वादन। पंडित जडेश हुगार जी का जन्म 4 जुलाई 1977 को हुआ। आपके पिता का नाम भगवंत अप्पा हुगार है। पंडित जडेश हुगार संगीत तथा कला परिवार से जाने जाते हैं। आप कल्याण कर्नाटक के जाने माने तबला वादक स्वर्गीय श्री शंकरप्पा हुगार जी के पौत्र है। आप अपने 8 वर्ष की आयु में अपने पिता श्री भगवंत अप्पा हुगार द्वारा तबला वादन तथा संगीत की शिक्षा प्राप्त की। साथ ही टॉप ग्रेड उपाधि प्राप्त आकाशवाणी धारवाड़ के टॉप तबला कलाकार आपके चाचा पंडित सातलिंग पा देसाई कल्लूर जी से भी तबला वादन में अधिक शिक्षा हासिल की है। कर्नाटक राज्य शिक्षा परीक्षा बोर्ड द्वारा शास्त्रीय संगीत में तबला विद्वत एवं गायन विद्वत की उपाधि, कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ से तबला वादन में MA की उपाधि, आकाशवाणी द्वारा आयोजित किए गए संगीत की ऑडिशन में तबला वादन में टॉप ग्रेड, बी हाई ग्रेड संगीतकार, बी हाई ग्रेड हिंदुस्तानी गायन कलाकार की उपाधियों के साथ फरुखाबाद, पूरब तथा अजरार घराना और दिल्ली घराने की भी उपाधि प्राप्त की है। पंडित जडेश हुगार धारवाड़ संगीत विश्वविद्यालय में लगभग 3 वर्ष संगीत सहायक शिक्षक के तौर पर और कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ में 1 वर्ष अतिथि व्याख्याता के पद पर कार्यरत रहे। आप केवल देश में ही नहीं बल्कि फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड जैसे विदेशों में भी अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। साथ ही आप देश विदेशों के कई जाने माने

0: तबला वादन में तीन ताल अब तक सुन रहे थे। अब सुनिए पंडित जडेश होगार जी से तबला वादन में रूपक ताल हारमोनियम लहरा संगत कर रहे हैं श्री रेवैया वस्त्रद मठ।
1: यू जस्ट हर्ड तबला सोलो बाय पंडित जडेश होगार इन तीन ताल। नाउ लिसन टू रूपक ताल।

0: इस रूपक ताल के साथ पंडित जडेश होगार तबला सोलो समापन कर रहे हैं। हारमोनियम लेहरा संगत कर रहे थे श्री रेवैया वस्त्रद मठ। यह कार्यक्रम आकाशवाणी कलबुर्गी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग किया गया था।
1: विथ रूपक ताल पंडित जडेश होगार कंक्लूड्स हिज तबला रिसाइटल इन टुडेज रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। हारमोनियम लहरा वॉज प्रोवाइडेड बाय श्री रेवैया वस्त्रद मठ। This program was recorded at the studios of Akashavani, Kalaburgi.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही क्षण बाद 11 बजे आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं दैनिक यात्रा आसान बनाएंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
2: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
1: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूनमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में इन चुनौतियों का समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
2: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे

0: पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा भारत को खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित लोगों को अवैध हिरासत में नहीं लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार और इंटरनेट सेवा भी निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के दोहरे रवैये और सार्वजनिक मामलों पर चुनिंदा तरीके से प्रतिक्रिया देने के तरीके की आलोचना की है। भारत ने नई दिल्ली में कल की घटनाओं पर संगठन की टिप्पणियों को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संगठन की टिप्पणियों को गैर जरूरी और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य दखलंदाजी बताया। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत के पड़ोस में विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक प्रतिक्रियाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के दोहरे रवैये से संगठन की विश्वसनीयता घटती है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रोत्सव आज पूरे देश में धार्मिक उत्साह और भक्तिभाव के साथ शुरू हो गया। देवी दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रमुख मंदिरों में पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पावन पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सऊदी अरब में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूती विद्रोहियों के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 अन्य घायल हुए। भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लोगों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। नेपाल में गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में आज सुबह अचानक आई बाढ़ से अनेक घर और पुल बह गए। किसी के हताहत होने की तत्काल कोई खबर नहीं है। मिस्र में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में 240.6 अंक के साथ अपना पहला सीनियर विश्व खिताब हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi has said India's progress draws strength from its rich cultural heritage, scientific achievements and modern infrastructure. The Prime Minister was speaking after inaugurating and laying foundation stones of development projects worth over 13,000 crore rupees across Tamil Nadu at an event held at IIT Madras today. The projects span road and rail transport, port infrastructure, petroleum and scientific research.
3: This is a historic day for Tamil Nadu. Today's program involves projects worth 13,000 crore rupees. We are inaugurating many completed projects and laying foundations for new ones. Some will make daily travel easier. Others will strengthen industry and trade. Together, they will create jobs for young people across Tamil Nadu. I congratulate the people of the state on this occasion.
2: Earlier in the day, Mr. Modi inaugurated the Poonamalli Vadapalani stretch of Phase 2 of the Chennai Metro Rail project, built at a cost of around 4,900 crore rupees. The Prime Minister and Chief Minister C. Joseph Vijay jointly flagged off the new metro services and travelled on the train. Prime Minister Narendra Modi also attended Golden Jubilee celebrations of Jai Gopal Garudiya Hindu Vidyalay in Chennai today. Addressing the students, the Prime Minister said the world is looking for solutions to emerging challenges and expressed confidence that India's youth have the talent and potential to provide them. The Supreme Court today directed authorities to ensure that people gathering peacefully are not illegally detained and that the free movement of people is allowed, subject to traffic regulations. It also called for a review of barricading arrangements in Delhi and directed the Centre